0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: परवाज में दावा जरो खत में
2: पूरी नन हो गया स्कूल का नए तले अल्लाह दे खैर की
3: अहमद भाई स्कूल तजा कने हम तले इस स्कूल के मा पर टोले जी ने कह खंदा कवि चिस्ता ल सुनख पे तोड़ दी
2: खोरे ची बिल्कुल खफा नशे उस मार्केट ता इश महन एंड फूड क्रीम रगली दी इश महन एंड फूड क्रीम इस्तेमाल सर बस्ता ल सुनख पे हस्तशी
3: अहमद भाई दब मुंता चरता मिलावीगी
2: इश महन एंड फूड क्रीम बस्ता सुता उरुसा शॉपिंग

أوكنا. ओके शिदोबानी चांग वाला पुलाची कम देता सु सम डीर मैसेज ने रोली गए सम डीर मैसेज ने रोली गए ठीक देखना कता सुवाने की आवाज सोरी दी वकी कता सु पटांग की आवाज सोरी दी वकी नो सम डीर मैसेज ने

हाय ब्रो कैसे हो, प्लीज तू कहाँ है सॉन्ग्स प्ले करो, ये सॉन्ग्स आपके लिए मेरी तरफ से, आई एम क्वीन। ये आप कहाँ हो मेरी बहन, मुझे समझ नहीं आई, ये आप कहाँ हो तो सारे सॉन्ग्स में होते हैं ना। और आपका शुक्रिया जो आप हम सबके लिए आते हैं, थैंक यू सो मच जी। गुलजमान खटक करकली खेल जमाई सिमिस लाजिमी शामिल कवा हसाम ब्रदर गनी ब्यादे लिस्तर तखाइमा कि जमाई सिमिस दा शामिल नकी नूर तखे सरी कॉल्स कवलो वाले तसलामुना आओ कम कसांचे ता प्रोग्राम ता कॉल्स कवी मैसेज कवी बजड़ में यो अरमान दे बस संगबा पूरेशी दुआरा तक हुई वो बस दुनिया निमगड़ी दा गुलजमान से अरमानों ने पूरे की गिखा सदफ फ्रॉम आजम वर्सक प्रोग्राम जिंदाबाद, थैंक यू सो मच सदफ खोरी कामयाब शी। इस दा प्रोग्राम जिंदाबाद हसाम भाई पाइंदाबाद सलमान खान वानीना न भाई प्लीज वे भाई हुआ वे अब्दुल्ला वजीर से वही तर्जुमा यू का जर का गिलमना अब्दुल्ला वजीर सवाई वदरी का वेगा छी सवाई जीरा तो उस तर्जुमा को ले मजा वजीर जब न पोएगा मता से दा सिचा खे कारे मसा

0: जाती है?
1: जी हाँ, अच्छी तरह।
0: फौलाद को खूब जैब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुंभ धात को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए

0: देखो BGM जस्ट दे रही है बैकग्राउंड के दावर वो कहना थे मुझे ही काम ना थैंक यू SS वजीर मुझे सलाम राजू भैया आई मोहन अवरेदी भैया सलाम वार का हैंडसम गर्ल था कशफ था मारुश था तोता हरीश था क्यूटर जिखान था जैन वजीर था सुंदर था ऐमन था नूर था ठोले सिस्टर था मैं करक वाल था उठांक वाल था ठोल होता डेर सलूना रिफत खटका सड़े माशे मैसेज दे वो किस्तुनो घर खला था न पड़ा भी जी वही चे रिफत खटकियां रिफत यो जहान मनना नेक्स्ट वही चे अस्सलाम वालेकुम माय हैंडसम भाई जानी कैसे हो प्रोग्राम बहुत अच्छा है अच्छा चल रहा है भाई जानी सवाल का जवाब मेरे ख्याल में समूलों के लिए अच्छा खुशी खान खटक रहे ना अच्छा प्रोग्राम अखर के दरिया और वर ऐसा ना भाई जी सलाम भाई ज़ैनब वजीर अमन तमे हा सलमुना यूज अली सलमुना लजाई का ना यूज अली कोशिश कवे छि दवामे जुने कवे छि ब्यामो टोलो आवरी उनको मैसेज शामे जो सलाम भाई जोनीता ईमान था और ताता डेड सलाम कशफ यमा कशफ यो जहान मनना रिफत विजय रिफत खटा का रक्षा की लवा करो सिदन का राज भाई इस तड़े मां से हर के लरो से छोरो रंगो सलाम तखस तड़े मां से यो जहान मना सलीम गडी हेल से तड़े मां से मैसेज दरो गला यो जहान मना काल देना शामिल और शाही देर बख्श नमाज रात वही छे भाई परुन सोल सजाओ वो आम हमे तशेल है वो कना परुन सोल के हर परिंदे के सर पर पाव होते हैं दासे परिंदा नेस्ता है चागे सार नेवी अगे पर नेवी अगे पाव नहीं चा सही है कना नेक्स्ट भाई जी खामोश तन्हा वही सलाम हमदर्द खामोश तन्हा अमान छे कल 11 बजे टीम की कना वही छे दस्ता खबरो इंतजार में भी ना ओ सिफात जिंदाबाद जी और सवाल जवाब दाए खुद खुदा अच्छा ठीक छला हमर तन्हा यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच और नेक्स्ट वही जी ताता अरबी स्वीट्स वाला है सलाम राज चाचू नाइट शो बदे आवरम खा हाउ राइट जी आरिशा यो जहान मनना और मैसेज मुनीम रो वाला वही अस्सलाम वालेकुम राज भाई जाना कैसा हाल होगा शो दे आवरम आरिशा खटक है मां टोली सिस्टर था मैं आरबी स्वीट्स वाला सलाम राजा जो दादा में सलाम ओके जी यो जहान मनना सलाम भाई ज़ैनब वज़ीर सलाम में वर्क है अच्छा पोकी सुनो गदे भाई वो मैसेज के यो सलाम ज़ैनब वज़ीर तो तदवा मैसेज कवा बाकी के सलाम ने लजाख को खियान दे सैदा अरुण खपाने से तुम रेडी मैसेज ने कड़ी कना और बाहर मैसेज के यो सलाम गौरीदुन को वाला मैसेज ना आप बोदिशी वैसे चाचा ता सलाम जी खुशी ता सुंदर ता अलीना ता आरिशा ता इकरा ता सायरा ता अनाया ता और हलीम ता यो जहान मनना भैया सलाम वालेकुम भाई हाउ आर यू प्रोग्राम बहुत अच्छा है मैं आयशा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो फाइन मैच कॉल यो जहान मना कैसे भाई सलाम भाई संगा मंगा ये भाई दा भाई जोड़ा दो खाना दा मौसम सुगा ओके अच्छा वो मैसेज पर टाइम रोस में ही चिना असर तरह से दला दा फजो इनको दे सोल जॉब चिदा के नाम देखो जी आगा दा अबाबिल जैसा था खरसक हवेल किस जी नुदा अबाबिल दशा अबाबिल चिदा 10 महीने बगैर दम जिक्र कुछ दिन ना दाई पो हवा के परवास चिदा का वाले जी और अबाबिल उम्र चिदा 20 साल भरे के दले जी यो जहान मना टोला और दुन को दे देरा आगा मनने कहो का जिंदगी पाव का सबूत भी दिली बात तो से मुलाकात कीजिए सिफात अक्षर शांति प्रोग्राम के सिफात कास्मेड एक जिंदाबाद टोल प्रोडक्ट के जिंदाबाद डे अक्षर रिजल्ट दा हर से के तुसे मिला जी कागा टांग दे जी टांग बजूर के पन जनसो कास्मेड स्टोर के पसने वके नौरान के जी तुसे मिला जी लकी सुमरा एरियाज दे तुसे मिला जी बनु सुमरा एरियाज दे जनी हेल बका हेल शिमाली जनूबी वजीरिस्तान करक ची सुमरा एरियाज दे करक बजूर के तुसे सिफात टोल प्रोडक्ट चा मिला जी पश्तन है खमा खा कवे जी पश्तन है न कवे व्याप सुरंग मिला जी دیر چھلے ریزلٹ دی جی کاغا شیمپو دی کاغا زیتون ہر بڑائی دی کاغا اس کے ہر بس پرے دا کاغا سمرا ہب کے بیوٹی کریم دی جی او یا ب کے کولڈ کریم دی یا ہیل کرک کریم دی نوبل کو تو استعمال کے اس ماشی دی تو جی سمرا پروڈکٹ دی اس تو بہترین ریزلٹ دے کے صفات کاسمیٹکس اور روب کے مت اجازت چرتا ہوئے خوشحال ہو صاحب دا ہوتا پر دو گانوں کے بھی ہوتا ہے تو پروگرام کے ساتھ اس نے ملاقات کی جی دل لو ہلا پو ہمان Thank you.
1: It's 12 o'clock.
2: It's 12 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Rockin' with the band. 88.4

0: पहले भी पता चलेगा कि इनका मैदा ठीक है, कोई और मसला तो नहीं है। ये सारी चीज देख के तो उन्हें बेहतर मशवरा दिया जा सकेगा। आप कोशिश करें कि वालदा को थोड़ा टाइम निकाल के
1: दवाखाना,
0: तो वो दवाखाने पे आ जाए, वो सबसे ज्यादा बेहतर है।
1: चले ठीक है। बिल्कुल, मेरी बहन ने जिसने टांग से हमें एक मैसेज किया कि उनकी अम्मी की हड्डियों में दर्द होता है, तो मेरी बहन आप ऐसा करें कि आप अपने अबू के साथ, भाई के साथ अम्मी को ले आए अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में। टांग सिटी में अगर आप हैं तो टांग सिटी में शवाल मार्केट का आप लोगों ने पता करना है। और इस शवाल मार्केट के बिल्कुल आखिर में अलशिफा दवाखाना है। हकीम साहब डेली सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होते हैं और मरीजों का चेकअप पाना जारी रखते हैं। सो इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप पाना जारी रहेगा। आपको कोई भी मसला है आप आ सकते हैं, हकीम साहब से आप बराह रास्त मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप लाइव शो में कॉल करना चाहें, SMS करना चाहें, तो 0319 55 23 404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 0963 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963 511 488 पर। सही है जनाब, 0963 511 488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ब्लड प्रेशर चिकन अच्छी शी दसडेगी। बिल्कुल हकीम साहब, एक मैसेज है प्यारे भाई ने पश्तो में किया है कि जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं उसके साथ जो है ना हिल जाता हूं, और कहते हैं कि कोई टोटका तो बता दें इसके बारे में।
0: ठीक है, बार दफा ये होता है कि ब्लड प्रेशर अरसा दराज से हो रहा होता है,
1: ऐसी बात है,
0: और वक्ती तौर पे हम टोटके नुस्खे या टैबलेट्स वगैरह उससे कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं ढूंढते। ब्लड प्रेशर ये एक किस्म की खामोश बीमारी है और इसका पता भी नहीं चलता और ये नुकसान भी काफी कर जाती है,
1: ऐसी बात है।
0: बेहतर तो ये है कि आप कोई वक्त निकाल के तो मुआलिज से मशवरा करें, वो आपके लिए बेहतर है फ्यूचर के लिए। और शॉर्टकट के अब उसके लिए कोई टोटका या कोई नुस्खा, तो फिर बेहतर तो है कि अपने आप को जरा स्ट्रेस से, टेंशन डिप्रेशन से, सोचो फिक्रों से जरा दूर रखें, खुराक अपनी मुतवाजन करें,
1: ठीक है,
0: पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, खाम खा हर किसी से हसद वगैरह ना करें, खुश रहें। और जहां तक है टोटके का या नुस्खे का, तो पंसारियों से छोटी चंदन के नाम से जड़ी बूटियां आती हैं,
1: छोटी चंदन
0: या इसरौल, इसको आप लाके इसे कोट के और इसका पाउडर बना लें, और हाफ टी स्पून आप पानी के साथ किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं, निहारमू ले लें, नाश्ते के बाद ले लें,
1: ठीक है,
0: तो उसमें यह है कि आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा,
1: ठीक है,
0: बल्कि कंट्रोल में ही रहेगा।
1: चले ठीक है, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सो इनकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। सो बिल्कुल खवातीन हजरात, अगर आपका भी कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो 0963 511 488 0319 55 23 404 पर कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई? जी रोशन भाई, कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: सुबह सवेरे 11 बजे बजरा लग जाता है, और कभी प्यार कट हो तो प्यार की बहुत से बजरा शुरू हो जाता है एलर्जी की शक्ल में।
1: ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं रोशन भाई? अटल शरीर से। ठीक है, आप रेडियो सुनते रहे हैं, हकीम साहब से मिश्रा लेते हैं इसके बारे में। जी हकीम साहब, क्या मिश्रा देंगे आप भाई को?
0: भाई का एलर्जी है इन्हें, आज लोगों को होती है किसी को डस्ट से, किसी को परफ्यूम से, किसी को मौसमी, इनको भी ऐसा ही है कि इनके एलर्जी है। और बार दफा जब ठंडी हवा सुबह सुबह की
1: चलती है,
0: इनको लगती है,
1: ऐसी बात है,
0: तो वो इससे इनकी नाक से बाद का पानी आना या खारिश होना और उसमें एक किस्म की जलन सी महसूस होना।
1: अच्छा, ये भी एक एलर्जी की
0: एलर्जी है, ये एलर्जी है, इसके लिए इसका प्रॉपर इलाज है और थोड़ा सा टाइम

देन मैसेज को दो प्लीज आई एम साबिया सही रहता सब इंशाल्लाह अच्छा मुझे लगा कि वो ऐसा कैसा मासूम मासूम है शायद हो नहीं वो नहीं है फिर इसरार एंड मतुला सिब दशी गरे नडे रिजो तो मनना खुश आले शे दरमन शे थैंक यू सो मच डियर मनना सिब द मैसेज का वालों मतुला भाई सर हम मिला विशेष टेंशन तमाम प्रोडक्ट पर कम से कि पस कम से कि मिला विशेष वर्तना खुश गरे के जरूरी इस्तेमाल के जरूरी रवाख ले नोटेंशन कस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान सो द टाइम इज ओवर

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, and very warm welcome to all the soul listeners of Radio Pagam 97.4 Pahatur, Global FM 91, there as well as and Radio Aman 88.4. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की। दोपहर के चार बज चुके हैं जनाब, और चार बजते ही आप अपने शहर के एफएम के ऊपर जनाब एक आवाज सुनते हैं जनाब, और जिस आवाज को कहते हैं केसन टी टाइम की आवाज, यानी केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज, तंदुरुस्ती की आवाज, शिफा की आवाज, हुस्न और खूबसूरती की आवाज। आप डेरा इस्माइल खान में सुनने वाले ग्लोबल एफएम 91 को, पहाड़पुर में सुनने वाले रेडियो पैगाम को, और टांग में सुनने वाले रेडियो अमन को, तमाम सुनने वाले गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मामे मामे, दादे दादी, जान नाने नानी, सभी सुनने वाले को खलील थाबे शाहवान के सलाम, ढेर सारी मोहब्बतों भरा सलाम, और ढेर सारी नेक तमन्नाएं, सलामती की दुआएं आप सभी के नाम। जनाब नए दिन के साथ, नए तारीख के साथ, मंगल के दिन है आज जनाब, रबीउल सानी की 9 है, 22 सितंबर 2026, और अस्सु का जो महीना चल रहा है उसकी आज है 7 तारीख। आज की तारीख के साथ ब्रांड न्यू शो के साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा वेलकम है जनाब, हमेशा की तरह आज भी केसन का एक घंटे का प्रोग्राम आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी काम काम की बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो काम की बातें आपकी पर्सनल जो है इस्लाह के हवाले से हो सकती हैं, वो डिजीजेस यानी कि बीमारियों के हवाले से हो सकते हैं, वो इलाज के हवाले से हो सकती है, वो खूबसूरती तंदुरुस्ती के हवाले से हो सकती है, क्योंकि जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान की जिस तरीके से हमारी कंपनी के साथ एक लफ्ज लगा हुआ है नेचुरल्स, ठीक है जनाब, और नेचुरल कहते हैं कुदरती को, क्योंकि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगी आप लोगों के लिए वो कुदरती होगी, वो नेचुरल होगी, और केमिकल और मुजर केमिकल से बहुत दूर, यानी कि हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको कोई खौफ कोई डर नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल की तो ये हमारे स्किन को खराब कर देगी, ये हमारे सेहत को खराब कर देगी। हमारी हर एक प्रोडक्ट, चाहे उसका ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है या आपकी स्किन के साथ है, यकीन कीजिए आपको ढेर सारा फायदा पहुंचाने वाली कंपनी। यही वजह है कि इस कंपनी का सफर जो एक ऑयल से शुरू हुआ था, जो इस वक्त मार्केट का नंबर वन ऑयल है, जिसको हम कहते हैं केसन हेयर ऑयल और शैम्पू, और एक ऑयल से आगे बढ़ने वाली कंपनी आज 3 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए तैयार कर चुकी है। और इस कंपनी ने सिर्फ एक प्रोडक्ट अपनी मर्जी से लॉन्च की थी, सिर्फ हेयर ऑयल जो है केसन नेचुरल पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से लॉन्च किया था। उसके बाद हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो आप लोगों की डिमांड थी, वो आप लोगों की विश थी, वो आप लोगों की ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से केसन हमें इतने सारे प्रोडक्ट इतने नेचुरल खालिस प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों ना ये फार्मूला भी हम केसन का इस्तेमाल करें, ये फार्मूला भी केसन का होना चाहिए, ये प्रोडक्ट भी केसन की होनी चाहिए। तो जनाब आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरते हुए हम आपकी मर्जी के प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि जनाब केसन का स्लोगन है प्यारा लगना तो आप सबका हक है।

जी जनाब, मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान और आप अपने शहर के एफएम से केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रमोशनल प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है केसन टी टाइम। टी टाइम में क्या मतलब है कि इस शो का नाम हमने इसलिए टी टाइम रखा है कि चाय का वक्त होता है और चाय के वक्त के साथ ही बिल्कुल आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और आप लोगों के साथ हमारा साथ 17 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने कंपनी की कोई बात नहीं किया। तो केसन कंपनी को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बखूबी जानते हैं और आज की कंपनी नहीं है, 2021 से हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं और हमारे हर एक प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। आपका एतमाद, आपका भरोसा, आपका यकीन ही हमें आगे बढ़ा रहा है और हम आप लोगों के लिए नए से नए प्रोडक्ट जो है आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। केसन नेचुरल पाकिस्तान की हेयर केयर ट्रीटमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू जो कि इस वक्त मार्केट के नंबर वन प्रोडक्ट्स हैं जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी समझदार बंदा है और जो भी ये समझता है कि आपके बालों को क्या चीज चाहिए और वो पढ़ा लिखा है, वो थोड़ी बहुत सोच विचार करता है, थोड़ा बहुत नेट को यूज करता है और सर्च करता है कि भाई बालों के लिए अच्छा क्या होता है और जब उसे समझ आ जाती है कि भाई बालों के लिए तो कोई 15-16-17 चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर उनसे बनी कोई चीज को इस्तेमाल किया जाए तो बाल प्यारे हो जाते हैं। सो केसन ने आप लोगों को जो ऑयल प्रोवाइड किया है, जो शैम्पू प्रोवाइड किया है, वो दादी नानी के नुस्खों से मिलकर बना हुआ है। केसन नेचुरल पाकिस्तान, जी जनाब, केसन नेचुरल पाकिस्तान का हेयर ऑयल 17 अज्जा पर मुश्तमिल है जो आपको अमेजिंग अमेजिंग किस्म के रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ हमारा शैम्पू मौजूद है और केसन का शैम्पू कितना अमेजिंग है ये शैम्पू कि इसकी जो सबूत है वो ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में कि डेर इस्माइल खान का कोई बड़ा सा बड़ा स्टोर ऐसा नहीं होगा जहां पर एलीट क्लास भी जाती हो, जैसे गुलशन कैश एंड कैरी है, जैसे A1 कॉस्मेटिक है, जैसे शीश महल है, जैसे कि अल्फरीद कॉस्मेटिक है, जैसे कि फैमिली शॉपिंग सेंटर है, जैसे कि अमान है, जैसे कि फारूक है, ये बड़े बड़े नाम है डेर इस्माइल खान के और यहाँ पर आपको ये दर्जनों की सूरत में मिलता है। तो इस शैम्पू के अंदर कुछ है, आप यकीन करेंगे, एक वक्त के लिए हमारा शैम्पू शॉर्ट हो गया बॉटल की, पता है आपको, पता है कि जब प्रोडक्शन होती है तो उसमें बाजू का टाइम लग जाता है और 10-10-15 दिन शैम्पू शॉर्ट हो जाता है। यकीन कीजिए कि लोग हमें कहते थे कि ये हमें शॉपर में मिल सकता है ये शैम्पू, अब बोतल जो नहीं है तो क्या हमें कोई शॉपिंग बैग में या इस तरह के किसी चीज में मिल सकता है, हम खुला लेने को तैयार है, हम कोई और शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहते और करते हैं तो उससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना अमेजिंग अमेजिंग फार्मूला है केसन का जो शैम्पू है, इतना अमेजिंग कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने एक दफा सिर्फ अपनी जिंदगी में एक दफा हमारा शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, केसन शैम्पू।

जनाब रेवोल्यूशन बोलते हैं इनकलाब को, और वाकई ये इनकलाबी शैम्पू है कि एट ए टाइम ये 5 बंदों के मसले हल करता है। आपके बाल गिर रहे हैं तब भी ये इस्तेमाल कीजिए, आपको खुश्की है तब भी ये इस्तेमाल कीजिए, आपके सर के अंदर खारिश है तब भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल सिल्की नहीं है तब भी इसको इस्तेमाल कीजिए, बालों के अंदर चमक नहीं है फिर भी इसको इस्तेमाल कीजिए, ये आपके बालों का कलर डार्क करने में मुआवन है। आपके बालों का कलर डे बाय डे डार्क होता जाएगा जब आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे। आपके बालों को तेजी के साथ ये लंबा करने वाला शैम्पू है। नियासिनामाइड फॉर्मुलेशन है जो कि आपके सर के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो केसन शैम्पू पूरी फैमिली के लिए एक इनकलाबी शैम्पू है और ये बात

शैम्पू है मार्केट का कि जिसके अंदर कंडीशनर बिल्ट इन है, ठीक है ना। आप कुछ चीजें आप देखते हैं कि एक्सटर्नल आप यूज करते हैं, अक्सर मोबाइलों के अंदर होता है कि ये बिल्ट इन है, ठीक है। जैसे आजकल मेमोरी बिल्ट इन आ रही है, पहले हम मेमोरी कार्ड लगाते थे तो डेटा उसमें सेव करते थे, आजकल मेमोरी जो है बिल्ट इन होती है। तो इसी तरीके से ये वाहद शैम्पू है मार्केट का जिसके अंदर कंडीशनर जो है ना वो

0: जनाब, अगर अभी तक आपने ये शैम्पू नहीं खरीदा है तो जरूर खरीदिएगा। आपको हम मनी बैक गारंटी के साथ साथ 3 दिन का ट्रायल भी देते हैं कि हमारा शैम्पू खरीद के जाएं किसी भी दुकानदार से, 3 दिन तक इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जनाब, 3 दिन में आप 2 दफा लगा सकते हैं या 3 दफा लगा सकते हैं, इसको लगाइए। अगर आपको आपके बालों के अंदर 3 दिन के अंदर बेहतरी नजर ना आए, आपको आपके बाल चमकदार होते हुए नजर ना आए, आपको अपने बाल जो है वो खूबसूरत और खिले खिले नजर ना आए, तो वापस कर दीजिए। कि बेसिकली तो क्लिंजिंग होती है कि कोई भी शैम्पू आपके बालों को कितना अच्छे तरीके से साफ करता है। हम ये कहते हैं कि जब आप ऑयलिंग करते हैं, यानी कि जब आप ऑयल करके खवातीन वॉश करती हैं अपने बालों को, तो उसके लिए वो 2 दफा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं। यानी कि ऑयल इतना ज्यादा होता है कि 1 दफा से साफ नहीं होता। हम इतनी मेयारी क्वालिटी के साथ अपना शैम्पू बनाते हैं कि अगर आप सिर्फ 1 दफा भी अपने ऑयल लगे हुए बालों को इस शैम्पू से धोएंगे तो आपको 2 दफा शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अब डैंड्रफ का ना कोई निशान, घना बनाए दे नया गुमान, रोक के है
0: जनाब ताजगी के साथ। एक महक है इसकी, एक खुशबू है इसकी, और हम दावा करते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जितने भी शैम्पू हैं उन सबसे कीमती तरीन खुशबू जो है वो केसन शैम्पू की है, जो कि जूप जंप परफ्यूम की है, जिसका लीटर तकरीबन 36 से 38 हजार रुपए लीटर है, और वो खुशबू हम अपने शैम्पू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अदर शैम्पू के अंदर जितने भी आपको मार्केट में शैम्पू मिलेंगे सबकी खुशबुएं एक जैसी होती हैं, और वो होता है 7 से 8 हजार रुपए लीटर का एक खुशबू वाली, जो कि यानी कि मुख्तलिफ किस्म की शैम्पुओं की खुशबुएं आपको एक जैसी लगेंगी। आप मुख्तलिफ कंपनियों के ट्राई करेंगे ना तो आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन वाहिद शैम्पू है कि इस शैम्पू जैसी खुशबू किसी और शैम्पू की मार्केट के अंदर नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसकी खुशबू बहुत महंगी है, 4 गुना महंगी खुशबू है, जो सिर्फ हम अपने शैम्पू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या फायदा होता है? नहाने के बाद ताजगी का एहसास, महक का एहसास, और एक ऐसी खुशबू जो आपको फ्रेश कर देती है। केसन शैम्पू 200 ml की पैकिंग में मौजूद है, 200 ml की ये बॉटल है, एक ही हमारा शैम्पू है। ठीक है जनाब, एक ही हमारा शैम्पू है और ये बहुत सारे काम करता है। अरफान मौला है जनाब, आपके बहुत सारे बालों के मसले याल करता है। 400 रुपए इसकी कीमत है, और हम कहते हैं कि अगर 3 माह मुकम्मल 3 माह तक आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, केसन शैम्पू को 3 माह तक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको विजिबल रिजल्ट जो है बालों की खूबसूरती में, बालों के घनेपन की सूरत में, बालों के चमकदार होने की सूरत में आपको नजर आने लगता है। एक और खूबी जो आपको शायद किसी और शैम्पू में ना मिलती हो, इसके फार्मूलेशन के अंदर एक खास इंग्रेडिएंट है, बल्कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो शायद किसी और शैम्पू में हो, जो केसन शैम्पू के अंदर है। एक तो ये कि हमारे शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल कभी उलझेंगे नहीं, और जो शैम्पू आपके बाल उलझा देता है वो क्या करता है, आपकी हेयर फॉल की सबब बनता है।

0: ना पांच मसलों को आप हल कर सकते हैं, इससे बाल आपके उलझेंगे नहीं। दूसरा, अगर जैसे कि डेरस मिल खान शहर है या टाउन का एरिया है, यहाँ पर घरों का जो पानी होता है वो लोग अक्सर तो पीते नहीं है, फिल्टर का पानी लेते हैं, लेकिन नहाते इसी पानी से हैं। तो ये पानी जो होता है, जो पीने के काबिल नहीं होता पानी, जिसको आप ये समझते हैं कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, तो वो पानी आपके बाल धोने के काबिल भी नहीं होता। और अगर आप उसी पानी से बालों को धोएंगे तो आपके बाल उलझते जाएंगे, बाल आपके खराब होते जाएंगे। अब उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन मैंने आपको कई दफा बताया है कि अगर आप ऐसे पानी से नहाते हैं जो इस तरह टाइप का है कि आप अपने पीने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते, कि ये हम इसे पी नहीं सकते हैं, नमक ज्यादा होता है या टेस्ट आता है या कुछ भी, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसी पानी से नहाएं, लेकिन जो आखिरी पानी आप डालें, कम से कम आधी बाल्टी जितना, एक लीटर जितना जो आप बालों के ऊपर डालें, वो फिल्टर का पानी होना चाहिए। इससे आपके बाल कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उसी पानी से बाल धोए जो आप पीते नहीं है, लेकिन आपने उससे बाल धो लिए, तो फिर आपके बाल डैमेज होते रहेंगे, टूट फूट का शिकार रहेंगे, खराब होते रहेंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि आप नहा लें, लेकिन उसके बाद जब आखिरी पानी आप डालें तो वो आपका फिल्टर का पानी होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपके पास केसन शैम्पू होना चाहिए, क्योंकि केसन शैम्पू के अंदर EDTA, ठीक है जनाब, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मुजर पानी के असरात को कम कर देता है। यानी कि नमक वाला पानी है, खारा पानी है या खराब पानी है, हार्ड वाटर है, ठीक है जनाब, जो कि सख्त पानी है, उसको जब आप उसी पानी के ऊपर केसन शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो मुजर असरात है उसको EDTA, एक खास किस्म के इंग्रेडिएंट है जो इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है।
1: एक सोल्यूशन केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन।
0: इतनी सारी खूबियां हैं भाई इस शैम्पू के अंदर, ये वजह है कि भाई लोग कहते हैं बोतलें खत्म हो जाए तो कहते हैं शॉपर में मिलेगा, है जनाब, इस वजह से कहते हैं कि भाई कोई और शैम्पू कोई लगाना ही नहीं चाहता जब कोई केसन शैम्पू इस्तेमाल कर लेता है। इसकी खुशबू, इसकी चमक, इसके बालों का सिल्कीपन। अच्छा जी, बालों का सिल्कीपन तो बहुत सारे शैम्पू देते हैं। केसन शैम्पू को जब आप इस्तेमाल करते होंगे तो अगर आप 3 दिन तक वॉश ना करें, शावर ना लें, तो आपके बाल वैसे सिल्की रहते हैं। वजह क्या होती है? वजह होती है कंडीशनर की। कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए, ये आपके हेयर ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है जनाब, कि आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाएंगे तो वो कंडीशनर क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर एक तह चढ़ा देता है। जिस तरह हम आपको कहते हैं ना कि साबुन से चेहरा धोने के बाद या फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद उसके बाद स्किन टोनर इस्तेमाल करें, केसन ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करें, इसी तरीके से शैम्पू से धोने के बाद भी कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम आपको नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, कि केसन शैम्पू के अंदर कंडीशनर बिल्ट इन है, ठीक है जनाब। आप जब इस्तेमाल करेंगे केसन शैम्पू को तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कंडीशनर मौजूद है जो कि आपके बालों के ऊपर एक तह चढ़ा देता है। और इस कंडीशनर की तह का क्या फायदा होता है जी जनाब, इस कंडीशनर की तह का ये फायदा होता है कि आपके बाल जल्दी मैले नहीं होते हैं। किन लोगों के बाल जल्दी मैले हो जाते हैं? जिन लोगों के शैम्पू के अंदर कंडीशनर नहीं होता, या जिन जो लोग शैम्पू करने के बाद कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब केसन शैम्पू से आप जैसे धोएंगे तो कंडीशनर की तह ऑटोमेटिकली आपके बालों के ऊपर आ जाएगी। कंडीशनर की तह सिल्की होती है, चमकदार होती है, कि अगर आप धूल मिट्टी से गुजरेंगे तो वो आपके बालों के ऊपर जज्ब नहीं हो पाएगी, नीचे गिर जाएगी। यही वजह है कि आपके बाल मैले नहीं होते हैं जब आप कंडीशनर यूज करते हैं, कि धूल मिट्टी जो होती है वो आपके बालों से चिपकती नहीं है, आपके बालों के अंदर जज्ब नहीं होती है, बल्कि वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल कई दिन तक मैले नहीं होते हैं।
1: अब डैंड्रफ का ना कोई निशान।
0: तो जनाब ये कहानी, इतनी बड़ी कहानी, तफसील भरी कहानी केसन नेचुरल पाकिस्तान के अमेजिंग प्रोडक्ट केसन शैम्पू की है, जो इस वक्त केसन का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन चुका है। कि इसको लोग ऑयल के बाद हमने इस शैम्पू को लॉन्च किया था। ऑयल तो ब्रांड है मार्केट का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शैम्पू सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि शैम्पू का इस्तेमाल जो होता है ना वो ज्यादा होता है, और हर रोज बंदा नहाता है, ऑयल तो आपने एक दिन छोड़ के लगाना होता है। सो जनाब आप भी इस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, टांक में मौजूद है या डेरा में या पहाड़पुर में, अपने करीबी दुकानदार के पास जाएं और उसे कहें केसन का शैम्पू, ब्लैक बॉटल होगी हमारी, ठीक है जनाब। और इस एक ही शैम्पू आता है केसन का, केसन शैम्पू, तो 400 रुपए में आपको मिलेगा जनाब। इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए कि इस शैम्पू ने आपके बालों की किस्मत को कितना बदला है। मुझे कहते हैं खलील ताबे शामान और आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। भला कैसे, आप लोगों के पास हमारा नंबर होना चाहिए और होगा भाई सही जनाब, 03449363366, ठीक है जनाब, 3366। किस किस के पास है जनाब हमारा नंबर, जिसके पास है उन्होंने हमें कॉल कर लिया जनाब, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम
2: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कारी जवेद साहब पहचान गए हैं सही तो को सा। हेलो हेलो जवाब जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, आवाज आनी पड़ी है मैं
2: नहीं आ रही,
0: आवाज क्यों नहीं आ रही आपको?
2: आवाज नहीं आ रही।
0: अच्छा जी, एक दफा फिर से ट्राई करेंगे, अब आ रही आवाज?
2: जी जी अब आ रही है,
0: अब आ रही है जनाब। कैसे हैं मोहतरम जवेद साहब, जवेदकारी जवेद साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है, आप सुनाएं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका एफएम ऑन हो गया माशाल्लाह।
2: जी जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और खैरियत है?
0: जी जी करम है अल्लाह का, आपकी दुआएं हैं और आपके साथ एक साथ डेरा टांक और पहाड़पुर में प्रोग्राम कर रहे हैं, तीनों इलाकों के लोग आपको सुन रहे हैं। और आप भी केसन के दीवाने हैं या नहीं हैं पहले ये बताइए।
2: बहुत ज्यादा दीवाने हैं, कोई ऐसी कंपनी के दीवाने नहीं है हम।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह केसन के दीवाने हैं, तो केसन की कौन कौन सी प्रोडक्ट ने आपको दीवाना बनाया है कारी साहब?
2: हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दर्द शिफा,
0: शिफाए दर्द ऑयल केसन का
2: जी। उसके बाद वो जो हाजमा कंट्रोल सीरप है,
0: हाँ जी माशाल्लाह।
2: तीसरे नंबर पर वो जो आपका ताकत प्लस है ना, ये सबसे बेहतरीन है,
0: सबसे बेहतरीन है। ये वजह कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा, बनता है जाता है, बनता है जाता है,
2: पूरा है। एक दो दिन हमने बंदे भेजे हैं लेकिन नहीं मिली चीज उनको,
0: बीच में शॉर्टेज आ जाती है, खरीदने वाले माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं, और चूंकि ये नेचुरल चीज है एक तरीके से बनती है, और बाजू का डिमांड इतनी हो जाती है कि डिमांड पूरी नहीं हो पाती, लेकिन एक दो इस्तेमाल करो तो बाद सही पता लगे की भाई एक महीने अपनी जान ते कोई खर्चा किता है। इस्तेमाल करने बिलकुल मुतमईन है। सर्दियां आने पैन कोल्ड क्रीम केसन दी गिना है, मुंह सस्ती होसी सारी, साबण मिल्क साबण सारा गिना है सही, क्योंकि वो साबण नाल चेहरा धोण नाल खुशकी बिल्कुल नहीं थींदी, ठीक है सही।
2: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: एक कोई प्रोडक्ट सारे नए प्रोडक्ट आने पे इंशाल्लाह सर्दी दी विच उनो कोई जरूर ट्राई करे सो तेन सर पैसे पैसे जाया नती से सारी गारंटी है सही, ठीक है।
2: और वो पता है जी इंशाल्लाह सारे अभी जाया नहीं दे में ही नती से
0: ए भी नती से। बहुत मेहरबानी सही, बहुत मेहरबानी,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत कीमिया फार्मूलों के साथ साथ एक और फार्मूला आप लोगों को देने जा रहे हैं हम, कौन सा भला?

0: जनाब बनाए हसीन बनाए जवान, केसन का स्किन क्लियर फॉर्मूला। जनाब स्किन क्लियर फार्मूला, चेहरा हो हसीन गोरा गोरा, जी बिल्कुल आपको बनाएंगे केसन स्किन क्लियर फार्मूला के थ्रू। और एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है जी हमारे साथ? ताहिर फारूक, सारे पुराने पुराने लिसनर माशाल्लाह। ताहिर फारूक भाई कि हाल है? बड़ी खुशी थी पुराने लिसनर जल्द ना सुनते हैं बहुत से बात सारे प्रोग्राम में जब कोई नाराजगी ही सारे कोल पहले ये दसो ना सही तो बजे वेंदे वे
1: अच्छा
0: तो ताहिर फारूक भाई को वेलकम आदे अपने प्रोग्राम दे विच ते सारे प्रोग्राम सुन दे होंदे वे या आज आज कल सुनना शुरू की ते पहले ये दसो मैं को मैं आज को मसला शुरू अच्छा इस्लामाबाद को लाए। चलो जी ताहिर फारूक भाई को ऐसा आपके प्रोग्राम में वेलकम आपको। अच्छा मसला हल थी है बात और ऐसी अच्छा ऑपरेशन करवाया है मसाने दा तबीयत की में है तुम्हारी आजकल अगे को चंगी है बस ठीक है ऑपरेशन थी मैंने तो वह बंदा चंगा थी मैंने ना बस थोड़ी एहतियात करो थोड़ी रेस्ट करो जी
1: जी।
0: चलो ठीक है जी बहु मेहरबानी प्रोग्राम सुनो सारा ते बस सारे नवे नवे प्रोडक्ट के बारे में पता तो को लगे जो ऐसे नवे केरे केरे शियां तुम्हारे वास्ते बड़े ही वदे हैं ठीक है सही
1: जी।
0: ओके ताहिर फारूक भाई हमारे साथ है और केसन का एक क्रीम आ रही है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्लास है 250-300-400 वाली क्रीम है नी थोड़ी सी महंगी है लेकिन निजात है छाइयों से निजात है दानों से निजात है डार्क स्पॉट से निजात मिलेगी आपको झुर्रियों से। जनाब गोरा गोरा रंग चेहरा हो हसीन कैसे होगा जनाब केसन के स्किन क्लियर फार्मूला से। और ये जब हम आपको देंगे इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि अभी ये तैयार हो रहा है और आखिरी स्टेज में है आगे इसके ऊपर मजीद 4-5 दिन क्योंकि जनाब जब क्रीम तैयार होती है तो फिर उसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है फिर इसकी फिलिंग हो रही होती है ठीक है जनाब। तो ये सारा कुछ बस आखिरी आखिरी स्टेज में और फिर गोरा गोरा मुखड़ा। हाँ जी जी बिल्कुल हसीन चेहरा मिलेगा आपको केसन की स्किन क्लियर से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील बेटी जी खैर है
0: जी परदेसी फिरा जनाब मुलाजिम दुकानदार रणवाल को सारे नाल है मेरा ख्याल है
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं रणवाल की बात करें ना मुलाजिम दुकानदार परदेसी बस शेर मदरसे के नाल मेरी दुकान है गांधी प्रोडक्ट मिल जाए दुकान से भी मिल
0: जाए को केसन के प्रोडक्ट घर को ज्यादा विकते पैन या दुकान से ज्यादा विकते पैन पहले मैं कोई दसवा
1: बस ये तो मेरे को जने आने तो एक दुकान से मेरे को गिनने से जाना ना वर घर
0: अच्छा मतलब है कि दो चार उतना तो दो चार इतना ये लगा पिया सीन सही
1: बिल्कुल नहीं निकाले थे बाकी कैसन भी जरिए तारीफ जो है ना ऐसा न करूँ बस जो है ना कैसन तो बस आप तारीफ के काबिल है ना
0: आप तारीफ के काबिल है तुसा तो हूँ आजमाई भी खड़े हुए तुम्हारे इलाके वाले भी आजमाई पेन सारे प्रोडक्ट को तो नवे जेरे सारे प्रोडक्ट आने पे स्पेशली सारा स्किन क्लियर फॉर्मूला अपने को रखा है ठीक है सही ते ओ अपना फॉर्मूला उन्ना भेड़िया को दिवे जिन्हां दे चेहरे छाइया ज्यादा थी गया नुक्कड़ ते छाइया खत्म नहीं थी दे दाणा दे निशान खत्म नहीं थी दे हल्के खत्म नहीं थी दे झुरिया आ गया उन्ना को देसो तो इंशाल्लाह इवे चेहरा मिलसी जो वाद याद करे सन के कंपनी ने उनको कोई क्रीम बना के दी आई ठीक है सही
1: असारे तो उन्हों शहर होने ना शहर इतने जनाना गिन देना अपने दुकाना को ना इतने से ब्याह इतने जनाना नहीं आते दुकाना को तेरे पास आने ना
0: हाँ बिल्कुल बस तू सा घर ही रखे सो तो इंशाल्लाह तू आके गिन से बाकी तुम्हारे को सारे प्रोडक्ट अवेलेबल इनसे
1: इंशाल्लाह जी प्रोडक्ट और एक
0: अच्छा ताकत प्लस खत्म है जरबत खान को आज पहुंच गए भी अगर गिननी हो तो कल चक्कर लगाए उन्होंने को
1: बिल्कुल
0: जी जनाब आवाज बहुत ज्यादा कट दी पई है नंदी और टांग वाले भाई जिन लोगों को ताकत प्लस नहीं मिल रही थी اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ طاقت پلس کا اس دفعہ جو بیچ بنو ٹانک کے اندر گیا ہوا ہے نا, وہ پہلے سے زیادہ طاقتور فارمولا بن چکا ہے, کیونکہ اب ہم نے جو نیا بیچ ریڈی کیا اس کے اندر کھجور کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اور ڈرائی کشمش جو ہے نا اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب اور زیادہ طاقت اور زیادہ جوش. جی جناب, یہ کہتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے.

0: जनाब के सन से चेहरा होगा हसी और रंग गोरा जब होता है तो तभी इंसान जो है हसी नजर आता है, प्यारा नजर आता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: चौधरी, चौधरी साहब पहाड़पुर एफएम से हमारे साथ हैं। मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है,
1: अल्लाह का एहसान है खलील भाई।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा?
1: प्रोग्राम में सुनेंगे तो रोटी कैसा है हमारी?
0: अच्छा, रोटी का तो मीठा है यार, ना दिन वाली रोटी होगी ना रात वाली रोटी होगी, तो ये कौन सी रोटी आप हजम कर रहे हैं इस वक्त?
1: तो भाई मेरे 2 बजे 2:30 बजे हम रोटी खाते हैं।
0: अच्छा, 2:30 बजे वाली, अभी 4 बजे फिर हजम हो रही है,
1: फिर उधर हम खाएंगे 4:30 बजे।
0: केसन के यूजर भी आप हो और आपको हाजमे का मसला हो, ये हो सकता है, या फिर आपकी गलती है कि आपके पास हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप नहीं है? ठीक है,
1: हाजमा कहता हूँ सिरप कहता है तो ठीक है, अभी अभी अभी कर दूंगा, अभी अभी घर बैठे।
0: अच्छा जी, कैसा हाजमा कंट्रोल सिरप वाकई हाजमा करता है या हमने इसका शोशा छोड़ा हुआ है? हाजमा कंट्रोल नाम रखा हुआ सिरप,
1: ऐसा शोशा छोड़ा हुआ था ना, ये अभी लौट के घर को आ जाता।
0: क्या चीज?
1: शोशा छोड़ा हुआ था ना, ये पुतले जितने भी थे ना तो लौट के घर आ जाती वापस।
0: आए आ जाती, अभी तो दुकानदार खत्म करते हैं, खुद ही कस्टमर खत्म करते हैं। तो आप भी माशाल्लाह, जिस तरह कारी साहब कह रहे थे कि दीवाने हैं, आप भी माशाल्लाह हमारी क्रीमों के भी दीवाने हैं, लेकिन अभी हम आपको जो दीवाना बनाने वाले हैं ना स्किन क्लियर फार्मूले के थ्रू, तो फिर आप बोलेंगे कि भाई हाथ की तरह मैं मुझे चूमने दो। हाँ जी, किन हाथों ने ये क्रीम बनाई है, किन हाथों ने ये स्किन क्लियर फार्मूला हमारे लिए बनाया, वो हाथ हमें दे।
1: सही बात है, नहीं नहीं खलील भाई, भाई अभी जो बोल रहा था भाई पता नहीं कौन तक आता था, मैंने वो सुनी नहीं थी, आवाज कटने लगी थी। जितनी भी है ना आपकी जितनी भी करीम है, इंशाल्लाह केसन की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो सही बात है, उनके अंदर अपने अपने अंदर गए थे चीजों में।
0: वो माशाल्लाह जो यूज करता है उसको समझ आ जाती है, और आप तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं।
1: अब वो बात तो है नहीं खलील भाई के हाथ नहीं गए लोंगड़ी के, तो अंगूर खट्टे हैं, ये तो सबके हाथों में
0: है। हाथों में है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, कोई मैसेज कोई पैगाम आपका, सबके नाम, डेरा के लोगों के नाम, पहाड़पुर के लोगों के नाम, या टांग के? सबसे ज्यादा आपको अच्छे कौन से लोग लगते हैं, टांग वाले, डेरे वाले, या पहाड़पुर वाले?
1: आपकी आवाज से सीखेगा खलील भाई, आज डेरा बजा खराब
0: जी। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आवाज कहते हैं कि मेरी कट गई जब मैंने सवाल ऐसा पूछा, सवाल ऐसा पूछा तो कहते हैं कि आवाज कट रही है, लेकिन लड़ाई हो जाए कि मेरा ससुराल तो डेरा में है जी ना, मैंने यहाँ जो है पहाड़पुर में है, और टांग का भी मुझे नहीं पता। देखिए कौन है हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर को मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? सवारू बहुत डिबारा बात है सारे को, सही कि मोहतरम चंगे वे वे तुसा बिरा खान? अच्छा जी, दुआ करें दे माशाला केसन को, असा तो को दुआ करें दे, ते केसन ही तोरे नाल रांधी 24 घंटे दे, किथे याद आ वेंदी है कि नहीं?
2: बिल्कुल माशाला जबरदस्त
0: केसन, तोरे वे 24 घंटे कैन कैन कैन कैन टाइम विच इस्तेमाल विच आ वेंदी है? अच्छा, ताकत प्लस तो वारे आ गई है, जुड़ गई है नाल ते माशाल्लाह, सेहत मजीद बेहतर, ताकत मजीद बेहतर, इंशाल्लाह हुन वला के तुसा जेले गिनसो ताकत प्लस, ता उन्दे च माशाल्लाह खजूर दी ताकत भी आ गई है, ते किशमिश दी ताकत भी उन्दे च आ गई है। कोई प्राइस को नीचे वधाया, कोई कीमत को नीचे वधाया, लेकिन उन्दे फार्मूले को असा मजीद इम्प्रूव कर छोड़ा। कल जी मैं सुन दे पाओ सो नजर हसन बया दे पैन के मैं ग्लूटा वाइट क्रीम इस्तेमाल की थी, तो मैं को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आई है, कि 3 को 4 दिन दे विच उन्हें अपना असर मेरे चेहरे ते दिखा दिता है। ता हर कंपनी कोशिश होंदी है अपनी शय को बेहतर को बेहतर करने की कोशिश होंदी है, तो असं भी अलहमदुल्ला इसी नहीं चाहते हैं कि भाई शय को बेहतर करूं। कोशिश तो सारी होनी है कि सर असा तुहाडे कोल जितने पैसे वसूल करूं वो हक हलाल दी होवे, ते उन्दे च ए नहीं कि तुहाकू असा हिक शाय ٹکے دے دیوں تے آنا تارے کو وصول کروں، ایک قدام بھی نہیں ہوندا مناسب جرہ ہے تارا جرہ حق ہے جتنے تو سا وہ پے کریں دے پیونے سا کو اندھا تو کو اتنا فائدہ کم از کم ضرور ملنا چاہیے جتنے رقم تو سا کو دین دے بے کھول دے سن ان شاء اللہ اتنے ٹاپ کوالٹی سارے کریما گن کے آنے پے جی پروڈکٹ متاثر کرے سر ان شاء اللہ متاثر کن پروڈکٹ گن کے آنے پے نو ہوں تک تو ساری کمپنی نے متاثر کیتا ہے لیکن ساری جیری نوی لانچنگ زن اگلے ہفتے دے وچ انشاءاللہ او تو کو بہت زیادہ متاثر کرے سن بہت مہربانی سر بہت مہربانی شکریہ سوارو سر نال موجود ہیں پہاڑ پور کول سارے پروڈکٹ استعمال کرے نے سارے پروڈکٹ کول اسا مطمئن ہیں

लेकिन अब ताकत प्लस की शानदार कामयाबी के बाद आपको स्किन क्लियर फार्मूला हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो हमारी बहनों के लिए एक तोहफा होगा यकीनन, क्योंकि पहली दफा वो कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करेंगी अपने चेहरे के ऊपर जो सीरम्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एट ए टाइम 4 किस्म के सीरम मौजूद है। अभी से सर्च कर लें, अभी से गूगल से पता कर लें, जेमिनी से पता कर लें, चैट जीपीटी से पता कर लें कि खलील भाई ने क्रीम बना ली है जिसका नाम है स्किन क्लियर फार्मूला, और वो कहते हैं कि उन्होंने क्रीम के साथ 4 सीरम्स ऐड कर दिए हैं, ट्रांजेमिक एसिड, एजलिक एसिड, नाम याद रखिएगा, ट्रांजेमिक एसिड सीरम है, एजलिक एसिड सीरम है, रेटिनॉल सीरम है, और साथ में हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। ये 4 बेहतरीन किस्म के पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपके छाइयों को रिमूव करेंगे, आपके दाग धब्बों को रिमूव करेंगे, आपकी झुर्रियों को खत्म करेंगे और आपकी स्किन को मुकम्मल तौर

0: जनाब गोरा गोरा रंग चेहरा हो हसीन केस स्किन क्लियर फार्मूले के साथ शो बहुत अच्छा है। और जो अच्छा जी ताकत प्लस वो मोटा करता है, बिल्कुल भी चेहरे को भी मोटा करता है। अच्छा जी हाल सुना खलील भाई, मैं हमजा बलोच हूँ कुराई से, शो नाइस है और सबको सलाम कह रहे हैं। जी जनाब बहुत अरसे बात के यू हया खान इतने लंबे मैसेज के साथ, और ड्यूटी ऑफिसर एक मिनट दीजिएगा, कनेक्शन मत काटिएगा, बहुत अहम हमारे लिसनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ के यू हया खान, कैसे हैं आप लिसनर सब, कैसे हो सर जी। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपका शो खामोशी से और बहुत गौर से सुना है, एक बात नोट की है, आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाते हैं, जबकि मेरे ये सब्जेक्ट भी हैं नहीं है, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में ये बातें बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। बस छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ी सी फिजिक्स भी पढ़ा दिया करें। वैसे सर एक बात तो बातें बताएं, आप जब स्टूडेंट थे तो आप को फिजिक्स सब्जेक्ट कैसा लगता था? और सर जी मेहरबानी फरमाकर केसन ताकत प्लस का महीने वाला जार लॉन्च कर दीजिएगा, ये वाला जार तो मुश्किल से 5 से 7 दिन निकलता है, प्लीज रिक्वेस्टेड। जी बिल्कुल सबकी रिक्वेस्ट चाहिए। और सर क्या आप जनरल अवेयरनेस के लिए पैनिक अटैक के सिम्टम्स बता सकते हैं, और इस दौरान इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए? सर जी माइंड ना करें, मैं इतने लंबे चौड़े मैसेज करती हूँ, बेसिकली मेरा कंपटीशन कॉलर्स के साथ होता है, जितनी लंबी इनकी कॉल्स होती हैं उतनी लंबी मेरे मैसेज होंगे। सलाम टू ऑल। जी बिल्कुल, ये मैसेज जो आपने किया इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल जी खत्म है, और फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री जो है और बायोलॉजी मेरे सब्जेक्ट बिल्कुल रहे हैं जनाब, प्री मेडिकल का मैं स्टूडेंट रहा हूं तो यही मेरी कॉम्बिनेशन थी, और फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, टाइम खत्म हो गया, कल आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: 88.4
3: Aman Radio
4: 88.4 Your station.
5: Dil se jo nikalti hai, dilo tak jo jaati hai, malumat ko jagati hai, duniya ka haal batati hai. ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है. ये आवाज है जो अमन की है. ये वो पैगाम है जो अमन है. रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम.

0: रेडियो अमन 88.4 डांसिंग नशीला हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: ज्यादा डीपली उसमें डूबते हैं।
1: जी जी।
0: अब दूसरी चीज आ जाती है कि एंजाइटी।
1: एंजाइटी
0: में भी ऐसा ही है कि इंसान को जो है जरूरत से ज्यादा फिक्र रहती है
1: जी,
0: ठीक है। दूसरा कि बेचैनी। अब वो अभी वक्त आया नहीं है या वो उस तरह के हालात नहीं है
1: जी,
0: लेकिन वो आने वाले हालात को पहले ही अपने सिर पे सवार करके बैठा हुआ है
1: जी,
0: ठीक है। और थोड़ा खौफ महसूस करना, ठीक है
1: जी,
0: लोगों से अलग थलग हो जाना, थोड़ा सा कोशिश करनी कि यार मैं डार्क रूम में चला जाऊं, अंधेरा हो और बस उस वहां रोशनी ना हो और ऐसी। तो चीज ये है कि हम उसे अपने तौर पे खुद अपने पे सवार कर रहे हैं, और जब वो जहन पे ज्यादा सवार होती है तो फिर हमें खौफ महसूस होता है, हम अकेले भी खौफ में महसूस करते हैं
1: जी।
0: दिल की धड़कन बाज़ बहुत तेज हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आदमी वक्ती तौर पर यही समझता है कि शायद मैं मुझे कोई हार्ट का मसला हो रहा है या मेरा बिल्कुल इसके चांसेस बढ़ रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: और थोड़ी सी बेकरारी जैसे तबीयत में कोई उलझाव सा आ गया
1: जी जी जी।
0: फिर मनफी ख्यालात जो हैं, एक तो वो उसे फिर उसका भी सामना करना पड़ेगा
1: जी।
0: तो ये चीज है कि हम अगर वही बात जो है उसको शेयर करें
1: जी जी,
0: किसी से उसके बारे में पूछें, मशवरा करें, या तो हो सकता है कि हमें उसका हल निकल आए
1: जी जी।
0: और उसका हल निकल आता है ये हमने खुद अपने पे सवार करी हुई है, या फिर हम ये सोचते हैं कि यार इसके लिए कोई मेडिसिन लें
1: जी,
0: और जब मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो उन्हें ज़हनी सुकून की दवाइयां दे देते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी। जो वक्त ही होता
0: जो वक्त ही हो, दूसरा कि वो बस गनूदगी में पड़े रहे,
1: गनूदगी,
0: ठीक है। वो भी एक किस्म का नशा ही है, जिस तरह नशा ही कोई चीज इस्तेमाल कर लेता है और वो फिर हवाओं में उड़ता रहता है,
1: फिर वो उन गोलियों की आदत,
0: वो उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो कोशिश करते हैं कि यार हम इसका सहारा लें और इसके सहारे जो है अपने मामला हल करें, तो ऐसा होता नहीं है बल्कि उल्टा और परेशानियां बढ़ती हैं
1: जी।
0: फिर आ जाता है आपका डिप्रेशन
1: जी जी।
0: तो डिप्रेशन में बंदा उदास तो होता है, लेकिन ये खाली उदासी के लिए भी नहीं है
1: जी।
0: इसमें एक खालीपन सा आदमी अपने अंदर महसूस करता है कि यार मैं तन्हा हूँ, हालांकि उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उसकी फैमिली है, सब कुछ है, दोस्त यार हैं
1: जी जी,
0: एक गैदरिंग है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं मैं उदास रहता हूँ, मैं मुसलसल अकेला हूँ
1: जी जी।
0: और उसके अलावा जो उसको पहले चीजें जिनमें वो दिलचस्पी लेता था
1: जी,
0: अब उनसे वो कट आउट है, अब उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा
1: जी।
0: तो तवानाई जो है उसमें ऑलरेडी वैसे ही कम हो जाएगी
1: बिल्कुल।
0: तो उसमें चीज यह है कि उसको डिप्रेशन में खुद वो अपने आप को ला रहा है
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: कोई मर्ज नहीं है,
1: मर्ज
0: बीमारी नहीं है
1: जी जी, बिल्कुल बीमारी।
0: हम इसको उस तरफ ले जाते हैं कि हम उसकी तरफ तवज्जो करते नहीं है। दूसरा यह है कि हम वक्ती दवाइयों का सहारा लेते हैं कि हमें सुकून मिले, या हमें कोई गाइडलाइन दे देता है कि यार आप ये गोली खा लो या ये कैप्सूल ले लो या ये इंजेक्शन ले लो, तो आप वक्ती तौर पे आपको सुकून मिलता
1: है, सुकून मिलता है।
0: लेकिन वो वक्ती सुकून जो है फिर वो दायमी हो जाता है,
1: दायमी हो जाता है
0: कि हम उसे हर बार वो ही अपने पे अप्लाई करते हैं
1: जी जी।
0: तो हम खाम खा और कई मर्जों में गिरफ्तार हो जाते हैं
1: जी।
0: तो चीज ये है कि आप अपनी नींद को जो कि इसकी वजह से उड़ जाएगी, भूख इसकी वजह से खत्म हो जाएगी। तो उसमें यह है कि अगर आपकी आप ये अलामतें क्यों पैदा होने दे रहे हैं
1: जी जी,
0: आपके दिल में अगर या आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है या कोई ऐसी बात है तो फिर आप उसे जिनको आप अपने क्लोज समझते हो
1: जी,
0: आप उनसे उसको शेयर करो
1: जी, कोई यार दोस्त,
0: बिल्कुल यार दोस्त, सबसे पहले यार दोस्तों से भी जो करीब तरीन हस्ती है
1: जी जी,
0: वो आपके माँ बाप है
1: जी जी, उनको आप अपना मसला
0: जो बताएं। आपको कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे
1: जी जी।
0: दोस्त यार कुछ ना कुछ फिर भी बीच में डंडी मार जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी हस्ती है कि वो कभी भी बच्चों को गलत मशवरा या गलत नहीं देगा, बल्कि वो उसकी उसके वजूद का हिस्सा है
1: बिल्कुल,
0: उसके ही दम से वो है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है
1: जी,
0: के यानी एक बाप का है कि यार मैं अपने जो मैं जिंदगी में हासिल नहीं कर सका
1: जी,
0: मैं तवक्को करता हूँ कि मेरा बेटा वो हासिल कर ले, ठीक है ना
1: जी।
0: अब जब वो उसका बेटा वो हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि बाप बाप की जीत हो गई, बाप ने वो हासिल करा
1: जी।
0: تو آپ کے نزدیک جو نزدیک ترین ہستی آئے گی وہ آئے گی آپ کے ماں۔